0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Studio time. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanko 7 baje.
5: Time check ko saathma. New Star Digital Color Lab tatha Dwaramai Offset Press. Solu Dutkunda Nagarpalika 5 Solukhumbu.

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू